के सभी तो पैदा मरे नहीं, जिम्मे के सभी तो पैदा मरे नहीं, जिम्मे के सभी तो पैदा मरे नहीं, जिम्मे के सभी तो पैदा मरे नहीं।